काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि नहि रक्षति दुःखं करणे नहि नहि रक्ष

0: We now bring you a recital from the Sikh holy book, the Guru Granth Sahib. Did you know that every Monday at 5:30 Indian Standard Time, Radio Sai offers you an hour-length program featuring the Sikh religion, its music, inspirational stories, and holy scriptures.
1: Tanasri Mahalla Panyava Karbarma Eko Ankar Sadgur Prasad बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ वड़े पाग पेटे गुरदेवा कोट प्राद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापे सोग अगन तिस जन ना ब्यापे सागर तरिया साधु संगे निरपव नाम जपो हर रंगे पार तन दोख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े तृष्णा यगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए अंदन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जन खन मैं तारा रहाओ कोई होवा कर्म रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन हर स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी तनासरी महला पंजवा कित पर

लोभ मोह माया ममता फनो जेह कट महे पिछाना रहाओ। पर निंदा उस्तत न जाकै कंचन लोह समानो, हरक सोग ते रह अतीता जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दै दिस कौ धावत चल जाहे ठहरानो, कहो नानक बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो। तनास

जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अदक डराओ मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पस ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हौ पतत तरो तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एको ओंकार सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी पर पूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर चुग चुगै प्रभावै सरवर में हंस प्राण पत पावै क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल ना जाए रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सह समाए सरवर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रिपवन जोत रहे लिव लाए।

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आद्यानूप, नानक जाचै साहि स्वरूप। तनासरी महला पहला।

0: बिन नावें को साथ ना चल, पुत्र कलत्र माया तोहया, दूजे पाए दुख होए, मन मुख जम जोया जियो, कर कृपा लिहो मिलाए, मैल हर पाया जियो, सदा रह कर जोड़, ब्राह्मण पाया जियो, प्रभ मन पावै ता हुक्म समावै, हुक्म मन सुख पाया, अंदन जपत रह दिन राती, सहजे नाम ते आया, नामो नाम मिली वड़ियाई, नानक नाम मन पावै, कर कृपा लिहो मिलाए, मैल हर पावे जियो, तनासरी महला पंजवां शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर दीन दयाल, जे संग हर गावी है जियो, अमृत हर का नाम साध संग रावी है जियो, पज संग साधु एका राधु, जन मरण दुख नासै, तुर कर्म लिखिया साच सिखिया, कटी जंपी फासै, पै परम नाठे छुट्टी गाठे, जम पंथ मूल ना आवी है, बिनवंत नानक तार कृपा, सदा हर गुण गावी है, नेत्रया तर एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख भंजनो जियो, दुख हरत करता सुख स्वामी, शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा, पल एक महे तराया, पूर रहया सर्व थाई, गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नानक सदा सिमरी, सर्व दुख पै भंजनो, आप लिए लड़ लाए, कृपा तारिया जियो, मोहे निर्गुण नीचा नाथ, प्रभ अगम्या पारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी, नीच थापण हारिया, जी जंत सब वस तेरा, सगल तेरी सारिया, आप करता आप भुगता आप सगल विचारिया, बिनवंत नानक गुण गाए जीवा, हर जप जप बनवारिया, तेरा दर्स अपार नाम अमोली जियो, नित जपै तेरे दास पुरख्या तोली जियो, संत रसन उठा आप तूठा, हर रस से ही मातिया, गुरचरण लागे महापागे, सदा अंधन जागया, सद सदा सिमर तब स्वामी, सास सास गुण बोलई, बिनवंत नानक तूर साधु, नाम प्रभु अमोलई।
1: We close the program with two Islamic nasheeds. It is generally believed by Muslims that nasheeds should have no musical accompaniment. Instead, the singer elevates the listener by the depth of his devotion, as he or she dwells only on sacred and spiritual topics.